0: क्या मेरे को मैं कस्टमर ओके किस नंबर पे
1: Navigation number 415541 busy guys.